0: இளம்பு பிரேக் டைம். शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन, बालबालिकालाई दिउँसोको चर्को घामबाट टाढा राखौं, उनीहरूलाई हलुका र खुकुलो कपडा लगाइदिऊ, गर्मीबाट बचाऊ।
1: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

put you on a flight to Dubai. Emirates first class, it's your boy. क्या ही चाहिए बताइए मैम प्लीज टिफनी बोटेगा अर्मीज बैंक डीप टच डाउन सी द फैशन एवेन्यू मेन सॉरी जी वैगन ब्रांड न्यू उसे पता मेरे बैंक अकाउंट की फिगर लगे जैसे किसी म्यूजिक कंपनी का रेवेन्यू.

0: जैसे है व्हाट्स अप वो बोलते डिवाइन तुझे स्लो पीना पसंद है ठंड वाटर वाइन तेरे पीछे जो खड़े वो से ब्लॉक करे शाइन दुनिया शर्माती व्हेन यू स्टॉप एंड यू स्माइल अब बाकी मुझे पे छोड़ तू बस हंसते रहे स्टोरी लाइक अ मेलोडी हां तू बजते रहे ये पर्सनल है छोड़े नहीं लस्टर है मराठी है मुर्गी और बोलती वो स्पष्ट है पहले थाली के बाद तुझे बाली दिखाएंगे सोच कैसे कैसे लोग मेरे शादी पे आएंगे ये बाकी फंसाएंगे बर्बादी बताएंगे जो करूँ तेरा सिर्फ तुझे हंसाएंगे
1: दिल क्या करे।

0: अंकुर चड्डा का स्वयंवर शुरू किया जाए.
1: नंबर वन, मेड इन चाइना राजकुमारी चुन ली. इंग्लिश स्टान से राजकुमारी गुल गुलु ग्लोरिया. दोनों देसी रानियों को टेस्ट किया जाए.

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो जु रंगला लागिरी आनन्दित तासिला दिन हिन्बा जयमसी तथा लासो फ्याफुला नमस्कार स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी समक बसुगो अंक 34 श्री रंगिदा स्वागत मुला न वियोग तामाङ तिनीङ रंग दिदेन रंगला नकारात्मक परिस्थिति रि हरङलासी विजय याङसिला विवाद ताम लाबरी सेमुला परिपक्क क्रिस्चियन गरे बुमोदेन गुनासु जे निराज आतामुला क्राबा विवा जेखेन जत्तु गजे जेखेन ताबा ताम बिहिम्बा परिपक्क क्रिस्चियन गरी खडा तामुला थेन दे परमेश्वर जा थुजे जे पिनमुला जब परिस्थिति गरे थेने गरे सेमलाबा अनुसार आतामुला भजन संग्रह 118:24 श्री रंगबिमुला तिनीलाई दिन परम प्रभुसे शुभ हिम्बा चुरी यंग आनन्दित तगाई थेन्दे रमाई आनन्दित तासेला छनोट लावा विवा यंग रंगसे निर्णय लावा हिम्बा यंगला दत्तेला परिस्थितिला कारण अहिन्बा मी यंगला लुइरी सदस्य कदे सामना लाबरी आरेबा कारण यंगला वरिपरि जे लगभ तासी यंग आनन्दित तासेला आत्मिक निर्णय लाला यंगला आजबा दिन ग्याम फिर्क्या थोनबरी यांगसे निदोबा नछाला निन कदम यांगला दिमागरी तामुला यांगदा सेम अनिबा नोन यांगसे नेबा निर्णय तामुला तिग्द विषम रोग पंक्षुमुला यांग नेबा रंगला दिन हालसी बिताबला विषी रंगला भावना द निर्देशन लावरी थापिन्छुगो गाई तिनी नेबा देन ताङबा तासेला निर्णय लाबा मुला गाई तिनी नेबा देन ताङबा तासेला निर्णय लाबा मुला दिसी स्वीकार लासी रोसे रंगला दिन्द आशिष पिनमुला आशिष पिनबाला लाग्रे म्राप थङसुगो प्रेरित 17:25 तर म्युन गंगसल री क्यार पावल देन सिलास प्रार्थना लामा परमेश्वर द मै गोवन मुबा ओछे सन्दो कैदी गदेसे चा न्यानमान मुबा पालन देन सिलास द पक्राउ तब मुबा थेनी गदेला क्वान च्याजी थेनी गदे द कडी सिपुङजी थेनी गदे द जेल्दी बोर्जी थेनी गदेला दातेल अवस्था कारण थेनी गदे सजिलोन दुखी देन निराश तासिला निर्णय लाबरी हमुला राउ थेनी गदे प्रार्थना लामा वै गोबा देन आनन्द मनावलाबा छनोट लजी परमेश्वर से आश्चर्य रूपरी थेनी गदे द जेल ग्याम छुट्याबलाजी प्रतिज्ञा पिन्जी 1 थेसलोनिकी 5:16 सदन तांगसी च्यु ओछे सदन प्रार्थना लौ दुःख सुख जस्तन तसै धन्यवाद पिङ्गो तिग्द विषम ख्रिस यसु देन छ्याम गीत तबा एनी गदेसे चुरङमा तगै बिसी परमेश्वर से मनमुला जेलरी मुबा पावल देन सिलासे चुनन लजी थेनी गदे आनन्द मनाव लजी थेनी गदेसी प्रार्थना लजी थेने थेनी गदेसी परमेश्वर थुदेसे पिन्जी जेली बाङबा कारण चाहिँ थेनी गदेसे परमेश्वर दा थुजी पिन्जी थेनी गदे दा थुजी पिन्जी तिग्द विषम थेनी गदे विश्वास त मुबा कि परमेश्वर जी थेनी गदे दा प्रेम लस्यु ला थेने थेनी गदेला परिस्थिति ज्ञान थेनी गदे दा छुटकारा पिनला नहेमेया 8:10 थेली छ नहेमेया से थेनी गदे दा बिजी तिगा इनी गदे न्यू जब चाबासे चाउ देन ज्याब थुङबासे थुङ्गो देन रङला लागे जुटाबला बारी मिगदे दा एन बो पुगै तिनीला दिन यंगला परमप्रभुला लागि पवित्र मुला उदास थताउ तिग्द विषम परमप्रभुला आनन्द नोन एनी गदला बङ हिन्बा जब रंग आजब परिस्थिति मुस्युला रंग हरङलासी प्रतिक्रिया पिनबा छनोट लस्युला नाला प्रश्न तिग रंग चुला बारी गुनासु लस्युमुला वा तिग रंग स्वीकार लस्युमुला कि परमेश्वरला आनन्द रंगला बङ हिन्बा परमेश्वर जी यंग आशा देन छुटकारा प्रतिज्ञा लस्यु मुबा जब यंग विश्वास लला कि परमेश्वर से यंग यंगला समस्या गदे ग्याम उद्धार लस्युला यंगला तीन आनन्द से प्लिङदेला थेन्दे दुख गायब तला हिब्रू 11:1 विश्वास लबच्चा आशा तब तम यंगला विशी ढुक्क तब देन आम्राङ तम्री पुरान भर लब हिन्बा मनला आनन्द महसुस लासेला निर्णय तब गच्छ रंगला परिस्थिति परिवर्तन तर्सेला प्रतीक्षा थालासुगो तिनी रमाउने देन ताङमा छनो

0: वा थ्लासेला अरे थेन्दे रोला शक्ति से लिछरी रंगसी सामना लसिला बेनन समस्या कदे ज्ञान फिरी रेशिमुला आमेन। परमेश्वर जी रंगनी जीवन री प्रशस्त मात्र आशीष। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661940 रि सम्पर्क लस्युगो। हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङनी छङमदानु।
1: Time check. It's 7 p.m.